0: FM.
1: Yes, मेरा साल वेरिफिकेशन तो मैं ऑनलाइन दो एकदम भारत ऑनलाइन दो गोरो का आर एन स्टाफ मिनर लिस्टिंग के लो रोज तांबुमान इतने बुस्तुकला एजी मिनर लिस्टिंग के ऑनलाइन अस्तानोले रेना साहब ललानी
2: appreciate it, John. Kyle, I love you straight. Have a top one, bro.